आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते आज दिन शुक्रवार शक संवत 1948 दे हाड़ महीने दी 11 तरीक ते ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 3 तरीक है। इस वेले 5:58 ते 33 सेकेंड होए ने। हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी है। इस सभा विच सारे ही स्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं।

0: पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sani Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan annual summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front TRF. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th of November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries toward the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. The annual Sri Amarnath Yatra will begin today from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. The Yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan.

0: आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वक्त तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: आओ हुण सर्वन करदे हां अगला शब्द। भाई दविंदर सिंह रागी इत्थे उन्हां दे रागी जत्थे पासों गायन कीता होया।

सुबह का मौसम जैसे जन्नत का एहसास, आंखों में नींद और चाय की तलाश, जागने की मजबूरी, थोड़ा और सोने की आस, पर आपका दिन शुभ हो हमारी सुप्रभात के साथ। जी श्रोतियों, प्रोग्राम सजरी सवेर लेके हाजिर हो चुकी हूं मैं, आप सब दी रेडियो दोस्त सुखदीप। मेरे वालों सारे ही श्रोतियों प्यार भरी नमस्कार। अज के प्रोग्राम तहत होवेगा सिलसिला राखे सरहदां दे, क्योंकि दिन है जी अज शुक्रवार ते साडे श्रोतिया ने डायल करना जी साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-242-331। ते उम्मीद करदे आं तुसी सारे तंदुरुस्त होवोंगे ते अपनी इस खूबसूरत जिही जिंदगी दा आनंद भी माण रहे होवोंगे, ते नाल ही जिहड़े साडे नन्ने मुन्ने बच्चे ने अज जिद कर रहे होणगे कि छुट्टी करवा दो, सो छुट्टी नहीं मिलनी जी, क्योंकि मौसम जिहड़ा उह बदल चुक्या है ते स्कूल जिहड़े ने शुरू हो चुके ने, तां खुशी खुशी जिहड़ा आपां स्कूलां नूं तैयारी करनी है जी। जी प्रोग्राम दे विच तुहानूं थोड़ा जिहा इंतजार करवावांगे फोन कॉल्स दे लई, क्योंकि पहलां आपां गल करांगे जी अज जसवंत सिंह रावत जी दे बारे।

जी जसवंत सिंह रावत जी, जिन्हां बारे कहा जाता है कि 72 घंटिया विच 300 चीनी फौजियों नूं ढेर करन वाले ये भारतीय राइफलमैन अज भी जिंदा ने। भारतीय फौज विच

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में

भारतीय डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इससे विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि

0: पूछताछों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत मौसम की उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरला, माही, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते जापान दे प्रधानमंत्री सुनाए तकाईची ने दहशतगर्दी अते हिंसक अतवाद दे सारे रूपां दी सख्त निंदा कीती है। जम्मू कश्मीर दे पहलगाम ते बालटाल मार्गां तों सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अज तों शुरू हुई। पंचायती राज मंत्रालय अज नवी दिल्ली च पंचायती राज मंत्रियां दी एक राष्ट्रीय वर्कशॉप दा आयोजन करेगा। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा, गंगा नदी दी सुरजीती एक सांझी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका खिलाफ भारत दे दो मैचां दी टेस्ट क्रिकेट लड़ी दा प्रोग्राम ऐलानिया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते जापान दे प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने दहशतगर्दी अते हिंसक अतवाद दे सारे रूपां दी सख्त निंदा कीती है। इन्हां विच पाकिस्तान तों संचालित सरहद पार दहशतगर्दी भी शामिल है। नवीं दिल्ली च कल भारत जापान सालाना सिखर सम्मेलन तों बाद जारी कीते गए एक सांझे बयान विच दोवां नेतावां ने पिछले साल 22 अप्रैल नूं जम्मू कश्मीर च होए पहलगाम दहशतगर्दी हमले दी सख्त निखेधी कीती। उन्हां पिछले साल 10 नवंबर नूं दिल्ली विच होई दहशतगर्द घटना दी भी सख्त निंदा कीती। दोवां देशां ने इस घिनौने काम दे दोषियां प्रबंधकां ते वित्तदातावां नूं बिना किसी देरी दे सज़ा दवाउण दी मांग कीती। दोवां ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा अते जैश ए मुहम्मद समेत संयुक्त राष्ट्र विच सूचीबद्ध सारे दहशतगर्दी समूहां अते संस्थावां खिलाफ कारवाई करन दा सद्दा दित्ता है। दोवां नेतावां ने दहशतगर्दां दे सुरक्षित ठिकाणियां नूं पूरी तरह खत्म करन, दहशतगर्दी फंडिंग चैनलां अते अंतरराष्ट्रीय अपराधां नाल उन्हां दे संबंधां नूं खत्म करन अते दहशतगर्दां दी सरहद पारों आवाजाई नूं रोकण लई सख्त कारवाई करन दा वी सद्दा दित्ता। दोवां प्रधानमंत्रियां ने एक आजाद अते खुशहाल हिंद प्रशांत खेतर दे सांझे टीचे लई समान सोच वाले देशां दरम्यान सहयोग वधाउण दी अपनी वचनबद्धता नूं वी दोहराया। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा,
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: दोवां नेतावां ने क्वाड ढांचे तहत हुई निरंतर प्रगति का स्वागत करदियां व्यवहारक सहयोग नूं वधाउण लई सांझी वचनबद्धता जाहर कीती। भारत ते जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक अते आलमी भाईवाली दे रूप च आर्थिक सुरक्षा दे महत्व नूं उजागर कीता है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग बारे भारत जापान संयुक्त ऐलाननामे विच कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा भाईवाली आपसी विश्वास, सांझियां कदरां कीमतां ते आपसी हितां ते आधारित है। इस मुताबक दोवां मुल्कां दी खुशहाली, सुरक्षा अते आर्थिक भविख डूंघाई नाल जुड़े होए ने। इह ऐलाननामा इस गल ते मानता है कि एक आजाद अते हिंद प्रशांत खेतर ते अंतर खेतरी सुरक्षा ते विकास लई आपसी अते सर्वपक्षी महासागर पहलकदमी दरम्यान तालमेल दोवां मुल्कां नूं आर्थिक सुरक्षा ते सहयोग वधाउण लई उत्साहित करदा है। दोवें देश पंज मुख खेतरां सैमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना ते संचार तकनालोजी, स्वच्छ ऊर्जा अते फार्मास्यूटिकल खेतर विच दुवल्ले सहयोग मजबूत करनगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा अज सवेरे जम्मू कश्मीर दे पहलगाम ते

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

0: इस बारी।
1: सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी।

0: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
1: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1969 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

0: 1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।
1: उनके ख्याल आए तो आते चले।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा गीत पिटारा स्टूडियो की घड़ी ते समा हो चुका है 10:48 ते 7 सेकंड दा। तुसी आनंद मान रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा। ते आओ हुण सुनदे हां कुलदीप माणक की आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत। गीत रचना चमकौर चक वाला दी ते संगीत दिता चरणजीत आहूजा ने।

जी प्रोग्राम गीत पटारा तहत सुनते हाँ अगला गीत जिस नूं आवाज़ां दित्तियां ने हरचरण गरेवाल अते सुरिंदर कौर ने। गीतकार गुरदेव सिंह मान ते संगीतकार ने चरणजीत हौजा।

जी श्रोतियों, ते आओ हुण सुणदे आं प्रोग्राम गीत पिटारा दा आखरी गीत। मुहम्मद सदीक अते रणजीत कौर दियां आवाजां दे विच बाबू सिंह मान दे लिखे इस गीत नूं संगीत दित्ता है चरणजीत आहूजा ने।

0: जी ते इस गीत दे नाल ही प्रोग्राम गीत पिटारा इथे ही संपूर्ण करन दी मैनू सुखदीप नू
1: ते मैनू सुखमान
0: दियो इजाजत धन्नवाद।

0: नहीं, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, और आपके साथ ये जो वाणी है इसे रंजन कहते हैं। आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 MHz। आज है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे का दिन एक खास उमंग लेके आता है। और वो उमंग ये है कि कभी मन कहता है कि भंवरे की तरह आप उड़ें, या फिर पंछी बने, उड़ते फिरें मस्त गगन में। और फिल्मों से अगर आपका नाता है, या आपको फिल्मों के गीत या अभिनय पसंद आता है, तो आप बिल्कुल सही स्टेशन पर हैं, सही चैनल पर हैं। अनुफ ये नूर, किसके चेहरे पर छाया है बताएं, बट आफ्टर दिस सॉन्ग सुनते रहें आकाशवाणी के संग।
1: उल्टे सुलटे
0: 90 वर्षों का ये सफर।

उफ, ये नूर, और नूर तो आएगा ही चेहरे पे अगर आप रहते हैं खुश खुश और इस बात से खबरदार कि कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे का दिन होता है हिंदी फिल्मों के, नई फिल्मों के रिलीज होने का। उसमें आज एक नाम जुड़ रहा है, अल्फा। अल्फा नॉर्मली उसके लिए कहा जाता है जो ग्रुप का लीडर हो, या फिर मोस्टली इन टर्म्स एक जगह पे ये भी यूज किया जाता है, इन इन अ पैक ऑफ अ डॉग, यानी या फिर जो भेड़ियों का झुंड होता है उसमें एक अल्फा मेल होता है। प्रोबेबली दैट इज द मोस्ट कॉमन यूसेज जो मैंने सुनी है, लेकिन इसे यूज किया जाता है उसके लिए जो थोड़ा सा बिंदास हो। जिस तरह की फिल्म आपने पीछे एनिमल देखी थी जिसमें रणबीर कपूर को दिखाया गया था, वो तो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वायलेंट चीजें दिखाई, पर अब आई डोंट नो, आजकल ये ऐसी फिल्में बन रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। खैर, अल्फा इस लीक से हटके है, इसमें क्या क्या खास है ये सब बताऊंगा। और किसकी शादी की खबर आपको देनी है, जो पहले ही बताया था, बहुत दिन करीब आ गए हैं। तो नया सूट आपने सिलवाया कि नहीं, क्या कह रहे हैं, बुलाया ही नहीं है। चलो ये एंड लॉट्स मोर, इसका कारण भी बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ रंजन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आलिया भट्ट और शर्वरी स्टार और स्पाई थ्रिलर थ्रिलर अल्फा रिलीज होने जा रही है। और स्पाई थ्रिलर है, जाहिर सी बात है, इसमें मार धाड़ बहुत है, एक्शन सीन्स है, इसके लिए बाकायदा बहुत सी ट्रेनिंग ली जाती है, बहुत आसान नहीं होता है। और देखिए, बॉलीवुड के भी तौर तरीके बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक नई किस्म की हवा चली है, जो ऐसे काम जो सिर्फ मर्दों के लिए सुरक्षित समझे जाते थे, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसी का एक प्रतिबिंब है ये मूवी अल्फा। वाह वाह, दिल खुश कर दिया। तो आप देखिएगा इसके अंदर, आपको आलिया को आपने कई रोल्स में देखा है, रोते हंसते और खिलखिलाते। उनकी बड़ी प्यारी मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ, नाम मुझे याद नहीं, आपको ध्यान हो तो 9868107070 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और ये तो वैसे ही मैंने जानकारी मांगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज भी तो आपको बनना है। अगर बनना है बॉलीवुड सरताज, तो आज का हमारा सवाल है कि फिल्म जो दिल चाहता है, फिल्म आई थी, उसमें आमिर खान ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, बस उसका नाम बता दीजिए। सो सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है हम आपको बना दें आज बॉलीवुड सरताज। आपने
1: मैं डालू दाल पे
0: दिल चाहता है मैं आमिर खान के कैरेक्टर का नाम बताना है और हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम बनाएंगे किसी एक लकी विनर को बॉलीवुड सरताज। आई विल पर्सनली कॉल यू, तो भूल जाइए शर्मलाज, रहिएगा फोन के पास, छोड़ के अपने काज, सुनिए मस्त रहिए आज।
2: हेलो,
0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स गल्ला गोरियां।

देखिए, इनकी लिरिक्स के अंदर थोड़ी सी वायलेंस है, जो नहीं समझ पाए मैं समझा देता हूँ। छना छना के तेरा पान दूंगा नाक, नाक तोड़ने की बात हो रही है, बट एक बहुत डिसेंट तरीके में। ये मजाक है, ये आप समझा करें ना।

तो जिनको नहीं पता था, those who are not really that familiar with Punjabi, तो मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले अगर आप ये गाना सुनते थे, आपको नहीं पता था ना ये बात हो रही है। मुझे याद आ गया फिल्म एनिमल का, और जैसे हमने अल्फा की बात की है, जो फिल्म बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाते हैं, मार धाड़ दिखाते हैं, प्यार का वो स्वरूप जहां एक प्रेमी दूसरे के लिए वायलेंट हो जाता है, उसी को मजाक अंदाज में कहना या किसी को वार्न करना, छना छनक तेरा पान देगा नक। तो गानों के लिरिक्स के ऊपर थोड़ा गौर किया कीजिए, ये सारी जो इतनी सारी जनरल नॉलेज है बॉलीवुड फिल्म की लिरिक्स के बारे में, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब जानकारियां आपको मिलती हैं कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ट्रेल्स पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। हाँ, तो ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं आकाशवाणी रेनबो पर, और भावनाओं को समझा करें, एंड वी एंटायरली टेल यू एंड रिक्वेस्ट यू कि वायलेंस अच्छी बात नहीं होती है, चाहे गानों में क्यों ना हो। खैर, हमने कहा कि आपने नया सूट सिलवाया कि नहीं सिलवाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमिर खान की फाइनली शादी हो रही है परसों, दैट इज संडे, आज है 3 तारीख, 5 जुलाई को उनकी शादी जो है वो घर पे होगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि छोटी सी शादी है, तो मैं एग्जैक्टली सोच रहा था, मैंने आपसे तो पूछ लिया कि आपने नया सूट सिलवाया कि नहीं सिलवाया, क्या आमिर ने सिलवाया कि नहीं सिलवाया, क्योंकि आई रियली फील हो सकता है कि वो जिस तरह के प्लाजो सा कुछ पहन लेते हैं, पजामा टाइप, और साथ में बड़ा रिलैक्स सा रहते हैं घर में, हो सकता है उसी तरह से उसी अंदाज में शादी हो जाए। इसके लिए और सारी जानकारी के लिए आपको इंतजार करने का पड़ेगा 5 जुलाई का, मैं हो सकता है वहां विटनेस करूं इस बात को, तो आपको बताएंगे आके लौट के। तब तक जुड़ रहे हैं आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेंड्स।

जी, अभी अभी लेटेस्ट खबर ये भी आई है कि जो धुरंधर फिल्म ने इतनी धमाल मचाई इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में, अब धुरंधर जो रिलीज होने जा रही है 10 जुलाई को जापान में रिलीज होगी, तो रणवीर सिंह ने उसके लिए बाकायदा एक मैसेज भी, वीडियो मैसेज भेजा है कि सब लोग जापान में बड़े स्क्रीन पर थिएटर पर जाके इसको देखें। ऑब्वियसली जो इंडियन डायस्पोरा है जो जापान में रहते हैं, वो लोग तो जरूर जाएंगे जाएंगे। एंड आई एम नॉट रियली श्योर, आई थिंक इट वुड बी अ डब्ड वर्जन या फिर सब टाइटल्स के साथ दिखाई जाती है। ये देखने के लिए मुझे जापान जाना पड़ेगा और उसके लिए जापान की टिकट कटानी पड़ेगी, तो इट विल टेक सम टाइम। आई मीन थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है। खैर, शाहिद कपूर की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि शाहिद कपूर एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने साइन कर दिया, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, एंड आई थिंक इट्स टेकन अ व्हाट डू यू कॉल एडवांस, पैसा भी ले लिया है। अदल बदल नाम है इसका। अक्टूबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। द फिल्म विल गो ऑन फ्लोर्स इन अक्टूबर। अक्टूबर अब ज्यादा दूर नहीं है, बट क्या होता है ना कि सब कुछ एडवांस में चल रहा होता है। जैसे आप एडवांस बुकिंग करते हैं, एडवांस फिल्में देखने के लिए तैयार रहते हैं, धमाल के लिए बहुत से लोग तैयार हैं जो कुछ दिनों में आगे धमाल 4 आई थिंक रिलीज होने वाली है। सो और दिस एंड लॉट्स मोर, ये सभी खबरें आपके साथ हम करते रहेंगे शेयर, और चाहेंगे कि आप ना हो बोर। इस गाने के बाद एक बार फिर से पूछूंगा आपसे बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल, तो जुड़े रहें, हो सकता है आप ही बन जाएं बॉलीवुड के सरताज।

0: सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ मैं हूं रंजन, और आकाशवाणी रेनबो का ये चैनल है। और हमारा सवाल बॉलीवुड सरताज का आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है जनाब। जरा अगर आप पहले ही मिस कर गए हैं तो इस बार सुन लीजिए। हमारा आज का सवाल है कि दिल चाहता है फिल्म में आमिर खान साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था फिल्म में, उस कैरेक्टर का नाम क्या था? अगर आपको पता है, नहीं पता तो उसे पूछ लीजिए। कोई आसपास नहीं है, आप अकेले हैं तो अपने फोन के पास जाइए। यू नो व्हाट यू कैन डू, है ना, फोन में बहुत पावर है। उससे पूछिए और हमें लिख के भेजिए आकाशवाणी रेनबो पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। यहां लूंगा छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। हो सकता है आपको बनाए आज हम बॉलीवुड सरताज, बट आपको जुड़ा रहना, अभी तो आधा ही सफर पूरा हुआ है और आधा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मिलते हैं इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
1: ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

साथ दे सोचेंगे बाद में, बाकी है जो भी बचा हम दोनों को चढ़ा नशा। और मुझे पता तेरे दिल में मैंने हथेली है सारी जगह, आजा साथ में गाना सुनेंगे बता। डिंग डांग डिंग।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर। ये सफर जो जारी है, ये 90 सालों से शुरुआत हुई है इसकी, ये तो आप जानते ही होंगे, और लगातार ये आगे भी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ सफर होते हैं जब आपको अपना हम सफर मिलता है वो ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाता है। जैसे साल 2000 में ऋतिक रोशन ने शादी की और 2014 में उनका डाइवोर्स हुआ। मुझे याद है, मैं तब भी प्रोग्राम कर रहा था और मैंने तब भी कहा था कि इतनी खूबसूरत जोड़ी सुजैन और ऋतिक कि क्यों अलग हो रहे हैं भाई, मत हो, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। हमने बहुत अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की थी, एंड दे स्टिल लुक सो ब्यूटीफुल एंड गुड टुगेदर। लेकिन अभी हाल ही में कुछ एक ऐसी खबर आई है जहां सुजैन की सिस्टर ने एक बार फिर से बात दोहराई है कि देखिए, हम लोग भी ऐसी मीडिया में खबरें सुन रहे थे कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान ऋतिक ने अपनी वाइफ को 400 करोड़ की रकम दी, ऑन दिस एंड दैट। कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वैसे अगर दी भी तो मैं पूछता हूं, इसमें बुराई क्या है? इफ यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट स्पेंड इट? मतलब अरे भाई, हक बनता है उनका। आपने सुना नहीं, सात वचन में एक वचन ये भी होता है कि जो आपका है वो आधा मेरा है। पता है ना आपको, तभी तो मैं कह रहा था थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा बाकी। खैर, अब ये इसके पीछे वजह ये रही कि उन्हें पता चला 14 साल की मैरिज के बाद कि ये लोग कंपैटिबल नहीं है। ये इशू आजकल हर घर में कहीं ना कहीं आप देखिएगा, टीनेजर्स के साथ भी है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत हो गए हैं। कई बार इंसान को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको कंप्लीट करता है और थोड़े समय बाद उसको लगता है कि ये खुशी भी कुछ समय के लिए ही थी। तो इस क्षणभंगुर जीवन में क्या ढूंढे है तू? खुश रहे, खा दिन में अंगूर, क्या ढूंढे है तू? एक प्यारा सा शादी का विदाई का सॉन्ग।

0: अब जब शादी का माहौल बन ही गया है तो हमने पहले सेलिब्रेशन के सॉन्ग सुनाए, अब हमने विदाई का सुनाया है। यहाँ पे जिक्र करना मेरा मन, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को, क्योंकि देखिए आमिर अपनी नई दुल्हन के साथ अपने घर में पहले ही गृह प्रवेश कर चुके हैं, तो ये रस्म वो कैसे निभाएंगी, डोली से कैसे घर ससुराल आएंगी, वो तो ऑलरेडी वहां है। एंड एक चीज और मैं गेस कर रहा हूँ कि संडे की शादी में क्या शाहरुख, क्या सैफ, क्या सलमान, ये भी वहां इनवाइटेड है कि नहीं, क्योंकि आमिर का पूरा बड़ा परिवार और खास दोस्त उन्होंने लिखा है जो छोटी सी इस सेरेमनी में होंगे। सो आप भी गेस कीजिए, मैं भी गेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये सारी बातें आपको आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे, जैसा ये जिस तरह से भी घटित होगा। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी। ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT।

11 बजकर 46 मिनट हो गए हैं और मैं हूं आपके साथ। अब समय ज्यादा नहीं रह गया, इसलिए बहुत सारी चीजों को स्क्वीज इन करके आप तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है भाई। यही तो आपकी और हमारे इस प्यार भरे रिलेशन की ब्यूटी है। वाह। और आज देखिए, बॉलीवुड बर्थडे के अंदर आज हम मनाने जा रहे हैं तिग्मांशु धूलिया का जन्मदिन। आज 3 जुलाई है। ये 3 जुलाई 1967 में पैदा हुए थे। ये बहुत ही काबिल डायलॉग राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं। अगर इन्होंने अपने इनिशियल डेज के अंदर गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए, जो फिल्म ने बहुत धाड़ बिजनेस किया था, बहुत प्यारी मूवी बनाई गई थी। हाँ, उसमें भी मार धाड़ है, क्या करें बॉलीवुड वाले सुधरते नहीं है। खैर, तो इस मूवी के लिए इन्होंने कास्टिंग से काम शुरू किया है एंड ही इज गिवन वंडरफुल मूवीज। बहुत सारी डायरेक्शंस भी इनकी रही हैं, जैसे पान सिंह तोमर में इन्होंने इसे आई थिंक स्क्रिप्ट लिखी है, डायरेक्ट भी किया आई थिंक। एंड नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म को 2012 में। साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स को क्रिटिकली एक्लेम किया गया। और इसके अलावा ये खास बात यह है कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल परिवार से आते हैं। पिताजी इनके जज रहे हैं, भाई इनके भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और ये बॉलीवुड के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो फिर तिग्मांशु धूलिया, आज के दिन हम आपको बॉलीवुड ट्रेल्स में आकाशवाणी रेनबो की तरफ से कहते हैं जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारा सवाल बस आखिरी बार पूछ रहा हूं, बॉलीवुड सरताज का हो सकता है आपका सर पे पहनाएं हम बॉलीवुड का ये ताज और आपको बनाएं बॉलीवुड सरताज। आमिर खान के कैरेक्टर का नाम बताइए दिल चाहता है मूवी में। अपने फोन के आसपास रहिए, मैं थोड़ी देर में किसी एक को करूंगा कॉल। जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: दिले नादान तू, दिले नादान तू वफादार हो जा। नहीं, गाना ये भी हो सकता था, मतलब सोच सोच का फर्क है भाई। बी पॉजिटिव एंड दैट्स जस्ट नॉट अ कलर, नहीं दैट्स जस्ट नॉट अ ब्लड ग्रुप। क्या बोल गया मैं भी बताइए। चलिए, हमारे साथ हमारी बॉलीवुड सरदार जुड़ गई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से फोन आपने रिसीव किया?
1: सर, मैं ईशा धर्मशाला से बोल रही हूँ।
0: अरे वहां तो मौसम बड़ा होगा, बढ़िया होगा। कैसा मौसम है, दिल्ली वालों को बताएं।
1: हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो काफी ठंडा हो जा रहा है।
0: ओके अच्छा, आपने बताया कि भाई आमिर खान का जो फिल्म है दिल चाहता है में, उसका राइट आंसर बताया, अपने मुंह से ही बता दीजिए, क्या नाम था उनका फिल्म के अंदर?
1: हाँ जी सर, उनका नाम था फिल्म में आकाश मल्होत्रा।
0: वाह जी वाह, आमिर की फैन है कि नहीं?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल।
0: अच्छा, तो अब देखिए 5 तारीख को उनका ब्याह होने जा रहा है, इट्स
1: हाँ जी,
0: गेटिंग,
1: फिर से
0: तो क्या अपने कुछ विचार रखिए इस पे?
1: मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस यही
0: नहीं
1: बोलूंगी कि
0: नहीं देखिए, जो फैन होती है ना उनका मोस्टली लड़कियों का ही होता है, कि पहले ऐसा होता था कि हीरो मैरिड ना हो तो उनके मन में अच्छा लगता था कि यार ये एक अच्छा हीरो है, शादीशुदा भी नहीं है, हो सकता
1: हाँ
0: है
1: जी
0: कल को मेरा ही इससे कुछ, यू नो बट हाँ, वो दिन अब लद गए हैं और अब तो खैर ये हीरो तो खैर बहुत उम्र दराज हीरो हो गए हैं। आप बताइए,
1: जी
0: आपके
1: सर,
0: फेवरेट 3 हीरो के नाम बता दीजिए बस।
1: मेरे तो फर्स्ट नंबर पर ऋतिक रोशन, सेकंड
0: ओके जिनके,
1: पे सलमान
0: ओके
1: और थर्ड में शाहरुख। हाँ
0: तीनों का ही हमने आज नाम लिया, अगर आपने प्रोग्राम गौर से सुना हो
1: हाँ जी सर, मैंने सारा सुना
0: तो।
1: था।
0: आप गेस करके बताइए, बस लास्ट बात पूछ रहा हूं आपसे ईशा, कि
1: हाँ जी
0: क्या, देखिए मैं गेस कर रहा हूं, क्या आमिर के खास करीबी दोस्तों में सलमान, शाहरुख, अक्षय या फिर
1: हाँ जी
0: बाकी खान जो भी हैं, ये लोग वहां होंगे शादी में? आपको क्या लगता है, जस्ट
1: मुझे
0: गेस।
1: नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो आएंगे।
0: ऐसा क्यों कह रही हो, दिल तोड़? चलिए ठीक है, ये आपके विचार हैं, हम इस बात को मानते हैं, और तो वेट कीजिए, 2 दिन बाद जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए आप बनी बॉलीवुड सरताज, आपको मुबारक हो।
1: थैंक यू सो मच
0: ओके बाय बाय। तो ये थी ईशा हमारे साथ धर्मशाला से, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल चाहता है से ही आपके लिए गाना, उदित नारायण साहब की आवाज में, जाने क्यों लोग। प्यार करते हैं

रिया, जाने क्यों, जाने क्यों, देयर सो मेनी क्वेश्चंस और बहुत ही कम है जवाब। एक ऐसा ही सवाल इंदु अहलावत मुझसे पूछ रही हैं। सीरियसली इंदु जी, आप चाहती हैं इसका जवाब दूं? चलिए दे देते हैं, आपने पूछा है तो क्या आप भी क्या याद करेंगे। कह रही हैं जी, आमिर की चौथी शादी कब होगी ये बताइए, सलमान की पहली होने के बाद। अब खुश है? अरे हमसे आपने सवाल पूछे हैं तो जवाब हमारे पास बड़े सारे हैं, क्योंकि ये है बॉलीवुड ट्रेल्स। और हम बताएं आपको बॉक्स ऑफिस में कि वेलकम टू द जंगल तो फिल्म 90 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है अभी तक रिलीज के बाद। एंड आई थिंक उसकी कुछ व्यूअरशिप घट रही है, लोग उतना आ नहीं रहे हैं। बट मैंने भी नहीं देखी, मेरे एक पर्सनली बात हो रही थी, मेरे एक फ्रेंड ने देखी है, वो कह रहा है दिमाग घर छोड़ के जाएं तो आप मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, इस तरह की मूवीज जिनको पसंद आती हैं जरूर देखें। फिलहाल मैं यहां से जाने की तैयारी कर रहा हूं स्टूडियो से, आपसे फिर मिलूंगा 1:02 के बाद। और कार्यक्रम रहेगा मेरे वाला सॉन्ग, तो जहां अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। रीजन क्या है कि जिनको बॉलीवुड सरताज बनाया है उनका नाम ही तो लिया है, और क्या दिया हमने उनको ये खिताब दिया है आज पूरे दिन के लिए, ईशा है बॉलीवुड सरताज। बाकी जिन्होंने भी सही आंसर दिया, पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। यहां पर अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक दिल में इमोशन जला जलाए रखना, नहीं नहीं वो तो दिया जलाए जाते हैं, दिल में अच्छे अच्छे खुशनुमा इमोशन बनाए रखना, अपना प्यार यूं ही दिखाए रखना, और कहीं याद करो ना करो बस दुआओं में बसाए रखना। रंजन कहता है ठीक है, बाय बाय। अगला कार्यक्रम लिपिका दास के साथ, प्ले इट कूल, आई विल सी यू लेटर, बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers, and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा।

जी हेलो फरमाइश सुनने वाले तमाम श्रोतियां नू मेरे वल्लों यानी के करमजीत कौर वल्लों प्यार भरी नमस्कार।

0: जी 0164-242-3331 नंबर हो चुका है डायल जी। देखते हैं पहले स्रोता साढ़े ना कौन ते कितो जुड़े ने। हेलो हेलो
1: हाँ जी बहन जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: हाँ जी मैं लत्तूराम शर्मा अनाज मंडी काला वाली जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी मैं, और गाना सुनना है जी मैंने अनजाना फिल्म का, मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज, जान चली जाए जिया।

0: जी जी पहले तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम के तहत।
1: आपका भी स्वागत है जी, आप हमारी नई अनाउंसर है, आपका भी हम स्वागत करते हैं कालावाली में।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी फरमाइश पे ये गाना चला रहे हैं, आपके रेडियो सेट पे पहुंच रहा है।
1: ठीक है जी, ओके जी मैम
0: जी, धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: जी 0164 2240 331 नंबर डायल हो चुका है जी। देखते हैं जी अगले कॉलर साढ़े ना कौन थे कितों जुड़े ने। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी कौन थे कितों गल कर दे हो भाई जी।
1: पिंड भगवानगढ़ और भुखियाली बिंदर सिंह जी।
0: बिंदर सिंह जी गीत दसो जी केड़ा सुनना चाहोगे जी।
1: भगवानगढ़ जी पिंड उर्फ भुखियाली जी जिला बठिंडा जी।
0: हाँ जी हाँ जी बहुत स्वागत है जी थोड़ा इस प्रोग्राम दे विच। ते गीत दस दो जी केड़ा सुनना चाहोगे।
1: गीत जी गंगा जमुना सरस्वती फिल्म चो सुनाना जी साजन तो मेरा उस्तार है जी।
0: ठीक है जी थोड़ी फरमाइश ते इस गीत नु चला रहे हैं जी सुनो फिर इस गीत नु।
1: धन्यवाद मैडम धन्यवाद
0: धन्यवाद जी थोड़ा भी
1: ठीक है जी मैडम।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले।

हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छू

0: जी 0164 2240 331 नंबर डायल हो चुका है जी। देखते हैं अगले कॉलर साढ़े ना कौन ते कितों जुड़े ने। हेलो
1: हेलो
0: सत श्रीकाल जी, कौन ते कितों गल करदे हो जी? आदड़िया पिंड तो गल करदे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा इस प्रोग्राम दे तहत। ते गीत दस दो जी, केड़ा सुनना चाहोगे? ठीक है जी, करदे हैं थोड़ी फरमाइश में पूरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस प्रोग्राम दे तहत जुड़न लई।

0: extra today while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimeters of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihan Mumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
1: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and harbour railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen, and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
0: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्ष।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की

0: समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश

0: हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी सुरीली दुपहर सुनने वाले तमाम श्रोतियों नू मेरे वालों यानी कि करमजीत कौर वालों प्यार ते सतिकार भरी नमस्कार। जी श्रोतियो सुरीली दुपहर तहत तुहानू पता ही है कि अज दे दिन सिलसिला हुंदा है चिट्ठियां ते मिठियां। इस विच तुसी वट्सअप राही मैसेज भेजने हुंदे ने ते चिट्ठियां ते मैसेज भेजने हुंदे ने वट्सअप मतलब खत लिखने हुंदे ने ते तुहाडे खतां दा सिलसिला ते वट्सअप मैसेज दा सिलसिला असी करदे हां शुरू ते उदों तक सुणदे हां मेरी पसंद दे इस गीत नूं।
1: ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਜਰੀਆਂ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों, इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद

0: मौजूद हूँ मैं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं, और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये
1: जी
0: उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया,
0: जी
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया भानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ,
0: आलिया बानो, गुजरात से। जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है? पहले
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: नमाज पढ़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ, जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है, उसे
0: हाँ, वो तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है। मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे। सच्चे काल मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ। मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना, कुछ काम करना होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है।
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ।
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ। चल
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चल
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर
1: हाँ,
0: पाती हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी, कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस तरह से
1: मैं
0: लेती हैं?
1: तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है, उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है। लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर
0: देखिए
1: वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे, उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है,
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए। अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: फिल्म
0: का
1: है ना।
0: जी,
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक शायरा हूँ
0: जी,
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरी।
0: पेन नेम है आपका लहरी?
1: लहरी। और मेरी किताब जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा,

0: और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए. मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया.
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी.
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना, जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है. और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है. मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना, वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे.
0: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
1: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
0: जी, मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश.
1: ये बात
0: मैं सही बोल रही हूँ?
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: तो
1: जी,
0: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल.
0: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में.
1: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी. लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए.
0: जी बिल्कुल. मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है.
1: जी,
0: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर. महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर. क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर. नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर.
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं, उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है. और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी.
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है.

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे
0: अच्छा
1: के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके। हाँ,
0: जी
1: बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हैं हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी, उतनी
0: जी
1: कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: बता।
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम,
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आ रहा है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी, देखिए प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी, हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला माहेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला माहेश्वरी भोपाल से।
1: मैं
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो बताइए
1: जी
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: वाला
0: ही
1: गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ,
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो
1: छोटी
0: वैष्णवी, बताओ आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ

0: रही हूँ।
1: तो विजया जी, मैं ये जानना
0: हाँ
1: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
0: हाँ
1: क्या
0: हाँ
1: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
0: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी, कि मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए।
1: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
0: और
1: की।
0: इतना
1: जी
0: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी
1: क्योंकि आप
0: और
1: टीचर।
0: उनका जो सॉल्व कर सकती थी, मैं कोशिश करती थी कि उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके,

0: और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, फिर पढ़ाया नहीं
1: जी,
0: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
1: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
0: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
1: जी,
0: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं।
1: जी,
0: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
1: जी,
0: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
1: जी,
0: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
1: जी, यही हम जानना चाहते हैं और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
0: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
1: जी,
0: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
0: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल
1: कुछ
0: रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही
0: जी
1: रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन हाउस वाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैम, मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल

जुबां। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तानकर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच

सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास। भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं।

वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के साबू थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ, दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा, उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए

भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अन्य

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहां। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई

क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है? चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक, कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है।

0: वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए। आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा? हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं। प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना। उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर। पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी।

थी। ऐसा क्या दर्द था उसका? प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ? आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे?

चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त

पक्षी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली, अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने किया।

0: झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित
2: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबक समा 5:21। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत।

नमस्कार, मैं मनदीप कोटली हाजिर हाँ प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दे नाल। अज दे प्रोग्राम दा सिलसिला पिंडां वाले दे तहत तुसी सुनोगे हाशिम शाह दी महान रचना सस्सी पुन्नू, जिस दे वाचक ते निर्माता निर्देशक ने बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा।

जी हाँ दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह दे राजकाल दे प्रतिनिध किस्साकारां विच हाशिम, कादर यार, अहमद यार ते अमाम बख्श दे नाम खास तौर ते काबिले जिक्र ने। जदों सरोतियो असी पंजाबी काव दे उगे रचनाकारां दे प्रसिद्ध किस्सियां दा जिक्र करांगे तां वारिस दी हीर पीलू दा मिर्जा, कादर यार दा पूरन भगत, मोहम्मद बख्श दे सैफुल मलूक दे नाल हाशिम दी सस्सी दा जिक्र भी सानू जरूर करना पवेगा।

दोस्तो तुसी ट्यून कीता है 101.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM बठिंडा ते तुसी सुन रहे हो अपना पसंदीदा प्रोग्राम पिंडा आले ते शहरा आले अपने दोस्त बलजीत शर्मा ते गुरदीप गिल जी दे नाल। सरुतियो हाशिम कहिंदा है कि अल्लाह ताला ने जदों अजल दे दिन दुनिया दी उत्पत्ति लई नक्श निगार बनाए तां जिस्म विच रूह दे नाल इश्क दी चिंगारी भी रख दित्ती। मतलब हर पासे इश्क दा ही जहूर है। हाशिम आखदा है हिकमत नाल हकीम अजल दे नक्श निगार बनाया करके रूह असीर इश्क दी कैद जिस्म विच पाया जो मखलूक ना बार इस दी अर्जू समा विच आया। हाशिम जोश बहार इश्क दी हर एक शान सुहाया हर एक शान सुहाया। श्रोतियो असीर दा अर्थ हुंदा है कैदी, मखलूक दा अर्थ हुंदा है खलकत, अर्ज दा अर्थ हुंदा है धरती ते शमा दा अर्थ हुंदा है आकाश। शहर पंभोर दे बादशाह आदम जाम दे घर एक बच्ची दा जन्म होया। चन्न वर्गी सोहनी होण करके बच्ची दा नाम सस्सी रख्या गया। पंभोर शहर बारे एक बंद दोस्तो आप जी दे सन्मुख अर्ज करन लगा हां। शहर पंभोर मकान इलाही बाग बहिश्त बनाया फर्श फरूस चमन गुल बूटा हर हर जात लगाया। नहरा होद तलाओ फुहारे नहरा होद तलाओ फुहारे रल मिल खूब सुहाया। हाशिम रू रहे फिर वसिया हाशिम रू रहे फिर फसिया दाम फरेब विछाया। दाम दा अर्थ दोस्तो जाल ते फरेब दा अर्थ हुंदा है धोखा। दोस्तो शहर पंभोर दा बादशाह आदम जाम सालां बद्धी तरसदियां अते मनता मन मन के थक गया सी। मापियां दे घर जदों सस्सी दा जन्म हुंदा है ते हर पासे खुशियां दी महक खिंड जांदी है। शायर आखदा है दूरों यतीम सदफ विच आया सुनी पकार दिलां दी फिरी बहार शगूफे वाली होई उम्मीद गुलां दी। सेज मलूक होई अब रेशम सेज मलूक होई अब रेशम आही सख्त सूलां दी। हाशिम वेख होई गुल लाला हाशिम वेख होई गुल लाला हगू बहारे फुलां दी हगू बहारे फुलां दी। दुरे दा अर्थ हुंदा है यतीम सदफ दा अर्थ हुंदा है सिप्पी अब रेशम दा अर्थ स्रोते हुंदा है पुली। सस्सी जन्म लिया शब कदरे मिसल हलाल दरखशा वेख बे आब होए नग मोती माणक लाल बद खशा।

अकल ख्याल के आसों बाहर नजर करे वाले नक्शा हाशम आख तरीफ हुसन दी शम्स मिसाल जर फशा। शम्स दा अर्थ हुंदा है दोस्तो सूरज, जर फसा दा अर्थ हुंदा है सोने दी वर्खा करन वाला।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां। भारत ने अज दोहराया कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी नूं लगातार हमायत देण दे जवाब विच सिंधु जल संधि अजे भी मुलतवी है। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावां धियां सत्कार योजना तहत खात्यां च घट पैसे पा के पंजाब दियां औरतां नाल धोखा कीता है। कपूरथला विच स्कूलां दे आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स की विक्री ते मुकम्मल पाबंदी लाउण दे हुक्म जारी कीते गए ने। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि सूबे विच बिजली की स्थिति पूरी तरह आम वांगे। ते चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने 6 तो 9 जुलाई तक पंजाब ते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने अज दोहराया कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी नूं लगातार हमायत देण दे जवाब विच सिंधु जल संधि IWT अजे भी मुलतवी है। अज शाम नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी देंदयां विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि ते भारत दा रुख स्पष्ट रहा है। उन्हां कहा कि पाकिस्तान नूं सरहद पार दहशतगर्दी तों भरोसेयोग अते स्थाई तौर ते पिछे हटना होगा।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि सूबा सरकार ने मावां धियां सत्कार योजना तहत जनरल वर्ग नूं सिर्फ 1,000 रुपए प्रति महीना ते पट्टी दर्ज जाता वर्ग नूं 1,500 रुपए प्रति महीने का तबादला करके पंजाब दियां औरतां नाल धोखा कीता है। उन्हां कहा कि 2021 विच आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर वल्लों कीते वादे मुताबिक 51 महीनिया दे कुल 51,000 रुपए की रकम का औरत लाभपात्रियों के खात्यां विच तबादला किया जाना सी।
5: आम आदमी पार्टी ने 51 महीने हो चुके, अज जी 1,000 के हिसाब नाल 51,000 रुपया देना चाहिए, पर 1,000 के हिसाब नाल 51 देने की थां ते हुण ओह कहिंदे कि असीं 3 महीनिया का देवांगे। 3 महीने भी जिहड़े कह रहे आ ओह 3 महीने हुण तो नहीं, उहदे च वी झूठा। मैं अखबारां राही पढ़िया कि इहदे च लिखिया गया कि इह 3 महीने जिहड़े आउण वाले जुलाई अगस्त सितंबर अगे, ओह क्यों कि इक जुमलेबाजी आ। इहनां नूं लगदा कि उदों तक
2: आज चंडीगढ़ विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया श्री ढिल्लों ने कहा कि जिवें ऐलान किया गया सी, एक गारंटी पंजाब विच 18 साल तो वध उम्र की हर औरत लई सी, जिस विच 1,25,00,000 तो वध औरतां शामिल सन। पर मान सरकार दावा करदी है कि उन्हां ने सिर्फ 36,00,000 औरतां नूं पैसे ट्रांसफर किए ने। इसका मतलब है कि 99,00,000 तो वध औरतां नूं वादा किए गए 1,000 रुपए की सहायता तो इनकार किया गया है। उन्हां जोर दे के कहा कि भाजपा पंजाब दी औरतां लई उदों तक लड़ती रहेगी जदों तक हर वादा किया गया रुपया उन्हां दे बैंक खात्यां तक नहीं पहुंचांदा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कीम बीते बुधवार शुरू कीती सी। पंजाब सरकार वल्लों बच्चियां दी सेहत संभाल नूं मुख रखदियां कपूरथला जिले विच स्कूलां दे आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स दी विक्री ते मुकम्मल पाबंदी लाउण दे हुक्म जारी कीते गए ने। इस संबंधी जानकारी दिंदियां कपूरथला दे डिप्टी कमिश्नर आकाश वांसल ने दस्या कि खुराकी वस्तां दी सुरक्षा ते म्यारां बारे कानून 2006 तहत सूबे भर विच बच्चियां नूं एनर्जी ड्रिंक्स वेचण ते 1 साल लई रोक ला दित्ती गई है। उन्हां दस्या कि इन्हां हुक्मां तहत देहाती इलाकियां विच स्कूलां दे 100 मीटर दे घेरे अंदर अते शहरी खेतरां विच स्कूलां दे 50 मीटर दे घेरे अंदर आउंदियां सारियां दुकानां, स्कूल कंटीनां जां किसे होर वपारक अदारियां विच एनर्जी ड्रिंक्स दी विक्री ते मुकम्मल रोक होएगी। डिप्टी कमिश्नर ने सेहत विभाग ते फूड सेफ्टी टीमां नूं निर्देश दित्ते

0: नमस्कार, मैं अनमोलप्रीत कौर अज तुहानू विश्व प्लास्टिक रहत दिवस की मुबारकबाद दिंदी हाँ। पर यह असली मुबारकबाद ता ही होवेगी जेकर असी प्लास्टिक बैग की वरतों घटाइए। असी वेखते हाँ कि असी साढ़े वातावरण नू बचाने लई बहुत सारे दिन जो वातावरण नाल संबंधित हैं वह मनाते हाँ, जिमें ओजोन दिवस, पानी बचाओ दिवस, रुख लगाओ दिवस मनाते हाँ। उस ही तरह असी अज विश्व प्लास्टिक बैग रह दिवस मना रहे हाँ। जिमें असी अपनी रोजाना जिंदगी विच प्लास्टिक बैग्स की वरतों करते हाँ, जिस विच असी कोई भी चीज़ लैके आनी होवे तां दुकानदार सानू प्लास्टिक दे लिफाफे विच ही दिंदे हन अते असी इन्हां लिफाफ्यां नू अजाही ही सुट दिंदे हाँ। ते ए लिफाफे बाद विच साडी मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति घटाउंदे हन। ए लिफाफे गलन विच 100 तों 2 साल लग जांदे हन ते ए लिफाफे साडे वातावरण विच वधेरे कूड़ा फैलाउंदे हन। असी अपने वातावरण विच प्लास्टिक दी होंद नू घटा सकदे हाँ ते इस नू घटाउण लई असी प्लास्टिक दे लिफाफ्यां दी मुड़ वरतों कर सकदे हाँ। इन्हां नू सांभ के रख सकदे हाँ ते जेकर असी कोई चीज़ दुबारे लियाउणी होवे तां असी इन्हां लिफाफ्यां विच ही लिया सकदे हाँ। बाहर प्लास्टिक लिफाफे पए हुंदे आ तां पालतू जानवर जिवें गावां, सूर आदि इन्हां नू खा लैंदे हन अते बीमार हो जांदे हन ते फिर मर जांदे हन। इस लई सानू अपने आले दुआले जीवां ते मिट्टी आदि दा ख्याल रखदे होए सानू प्लास्टिक लिफाफ्यां दी वरतों सही तरीके नाल करनी चाहीदी है। सानू ए भी करना चाहीदा असी प्लास्टिक दे लिफाफ्यां दे बदले जूट दे थैले जां कपड़े तों बने थैलियां दी वरतों करदे रहिए अते देश विच्चों प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करिए तां जो साडियां आउण वालियां पीढ़ियां ते वातावरण प्रदूषण ना हो सके। धन्नवाद।
1: नमस्कार, मेरा नाम सिमरन कौर है। जिवें कि सानू पता है कि अज 3 जुलाई है, विश्व प्लास्टिक बैग रहत दिवस अज असी मना रहे हाँ। इसका मकसद है कि प्लास्टिक बैग जो असी हर निक्का मोटा समान खरीदन, वेचन जां होर कम्मां लई इस्तेमाल करते हाँ उसनू जड़ तो खत्म करना, क्योंकि सानू ये गल चंगी तरह पता है कि प्लास्टिक बैग साडे वातावरण लई किन्ने को हानिकारक हन। असी अक्सर ही सुनते हाँ कि सड़कां उपर घूमन वाले किन्ने ही पशु इन्हां नू भुख लगन कारण खा लैंदे हन अनजाने विच ते उन्हां दी मौत हो जांदी है। असी पंजाब दे रहन वाले हाँ जिस नू 5 पाणियां दी धरती कहा जांदा है ते ए भी कहा जांदा है कि इत्थों दी धरती सोना उगलदी है, पर प्लास्टिक बैग साडे सूबे दी साडे देश दी इस खूबी नू खत्म कर रहे हन। पंजाब दे पानी नू गंदला कर रहे हन ते धरती दी उपजाऊ शक्ति नू खत्म कर रहे हन। ए भी देखण विच आया है कि प्लास्टिक बैगां दा 79% हिस्सा मिट्टी ते पानी विच ही पिया रहिंदा है ते सिर्फ 10% हिस्सा ही रीसाइकल होके मुड़ वरतों विच आउंदा है। प्लास्टिक बैग नू सड़न विच 500 सालां तों भी वध दा समां लगदा है, जो कि एक बहुत ही वड्डी समस्या है। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਲਿਫਾ

रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ताइयों शर्मिला तेरा पानी परे नी होर ना कोई नी तेरे रंग वरगी जट्टी मेरी जट्ट नू पतंग वरगी होर ना कोई नी तेरे रंग वरगी।
1: प्रोग्राम शाम सुहानी इसी तरह जारी रहेगा ठीक 8 बजे तक। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी ते समा है 7:29:47। ठीक 7:30 ते तुसी सुनोगे पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। भारत ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि उदों तक मुलतवी रहेगी जदों तक पाकिस्तान सरहद पारों दहशतगर्दी नूं अपना समर्थन बंद नहीं करता। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत साल लई $1 ट्रिलियन के बरामद टीचे हासिल करने की राह ते है। रक्षा खरीद परिषद

0: कुछ नगमे दिलां दी धड़कन बन जांदे हन।
1: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम,
0: अते कुछ फनकार सदियां तक याद रहंदे ने।
1: मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना।
0: जी श्रोतियो, अजेही ही अमर सुरां दे मालिक SP बाला सुब्रमणियम जी नू समर्पित विजय लक्ष्मी लेके आ रहे ने प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने।

0: सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
1: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स,

0: इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
7: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा।
7: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं

0: राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश

0: देश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। जहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपत शाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया।

0: शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।

0: और भगवान ना करे कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी।
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं रानी माँ नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री
1: उड़ीसा,
0: अकाल भाई जी, कौन साहब बोल रहे ने जी?
1: मैं बूटा सिंह बोल रहा हूँ, पिंड सुखलदी तो।
0: बूटा
1: तुम
0: सिंह, पिंड
1: मसरी
0: सुखलदी तो। अपना गीत दसो भाई जी,
1: मसरी ते रीत कौ ला दो जी, मित्रा वाला ढाबा।
0: मित्रा ढाबा। सुन दिया भाई जी गीत।
1: ठीक
0: धन्यवाद
1: है जी, ओके।
0: जी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम

0: हम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह

0: हाँ, ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे

0: आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार

0: और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजा के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: भले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेह पूर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान और शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने।
1: बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी ये सच है, हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया ये भी सच है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि अख्तर गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
2: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
2: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में किसी फिरदौस का नाम दे रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए, लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: சுனாய் பாயலியா, எனக்கு எனக்கு துறை பாதே பாயலியா.
1: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम. इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम.
0: हर तरफ अब

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अक्खड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में,

क्षितिज गुनगुनाकर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती हैं, जैसे आवाज लगाती हैं। कभी देखो तो यहाँ इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसीं रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।